0: ये है Like a Gold 10:35 AM.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel, at all protected.
4: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
4: Exclusive radio partner, Like का रेडियो.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
0: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
5: Four beers, please, garçon!
4: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
7: Taza kare apni yaadein Leica Gold ke saath.

मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: in Dubai
3: Packed for the trip Gifts Passport
4: Check Just dreading that phone bill when I get back from India Roaming is a nightmare
3: Mate you're doing it wrong Just get Simzy
4: Simzy
3: It's an eSIM app You buy a data plan for India starting at just $5 No swapping plastic SIMs No kiosks
5: Plans for Asia Europe and beyond Search simzy.com That's SIMZY.com T's and C's apply
6: Classic Nagme aapke

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीर्थ ना।

अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए।

0: Breakfast with Deep Raja. After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
1: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
2: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
1: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
2: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
1: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल ਆਟੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ।
4: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟਪੋਟ ਕੀਤਾ।
5: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
4: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
5: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
6: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਨ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
7: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
4: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
0: Breakfast with Deep Raja.

0: Allah. Breakfast with Deep Roger. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: London, the wait is over.
2: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
1: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
2: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
1: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
2: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
1: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
3: Haldiram's.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410, दैट्स 8574 8410। साफो ट्रेवल at all protected.
5: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai real estate stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you and Quality Foods Haze.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर furniture.co.uk पर जाएं।
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबो थिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है। बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500। पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10। विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA।
9: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहा है।
10: BAPS मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तुम्हें ले जा रहे हैं आप पवित्र यात्रा पर।
9: यूरोप ना 3-9 દિવસના ટૂર,
10: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
9: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
10: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
9: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ।
10: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
11: 40 મિલિયન પીપલ લિસન ટુ કમર્શિયલ રેડિયો ઈચ વીક, ધેટ્સ 80 મિલિયન ઇયર્સ ગિવ ઓર ટેક। એમ્પ્લીફાય યોર એડવર્ટાઇઝિંગ એટ radiocentre.org.
0: બ્રેકફાસ્ટ વિથ ડીપ રાજા।

0: कुछ कहता है।
1: यह सिर्फ लता जी और रफी साहब की आवाजों में मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत।
0: कुछ कहता है,
2: कुछ कहता।
1: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक और उससे पहले भी आपने हीरो फिल्म का गीत सुना कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि गब्बर सिंह ने भी कहा है कि जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह ये कह कर गया। इसलिए प्यार में डरना नहीं है, बिंदास जी भर के प्यार करना है अगर आपको किसी से है तो। और चलिए इसी प्यार भरी बातों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा संडे के दिन एक बार फिर से आपके साथ है। 1 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल मज़े में हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं और कल रात को एक अच्छी नींद लेकर चुके हैं। क्योंकि कल मौसम अच्छा था, अच्छे से नींद आई, ठंडक थी थोड़ी सी, वरना उससे पहले तो बस मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो आज भी मौसम अच्छा है, शानदार है और आज हमें कुछ बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो बस मौसम को एंजॉय कीजिए और यहाँ से बजने वाले गीतों को भी याद रखिए। एक नहीं दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड क्लासिक्स सुनवाऊंगी मैं आपको।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो आज ये 1 pound आपको देगा 124.2 भारतीय रुपए और हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाई एस बी आई ब्रांच ऑनलाइन बाई यूजिंग दी योनो एस बी आई यू के मोबाइल ऐप। और याद रखिए इस महीने के एंड तक यानी कि होने ही वाला है, आप 75 pounds का गिफ्ट वाउचर हर दिन जीत सकते हैं जब आप ट्रांसफ़र कराते हैं 1000 pounds और आप 1 gram गोल्ड कॉइन भी जीत सकते हैं जब आप ट्रांसफ़र कराते हैं ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
4: Ye hai Leica Gold.
5: Leica Radio.
3: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
1: तो आज कोलंबिया और पोर्चुगल के बीच में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मैच है और उसके अलावा एक और मैच है जो साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में खेला जाएगा। तो मैच तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ याद दिला दें कि भूलिएगा नहीं अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
3: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
6: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM

किशोरदा की आवाज में कालिया फिल्म से था ये गाना, जो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी अमिताभ बच्चन की। और इस फिल्म के गाने ही नहीं पॉपुलर थे, इस फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और आपने सुना होगा वो डायलॉग अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस तरह के और भी डायलॉग जो अमिताभ बच्चन ने बोले हैं, एक डायलॉग उनमें से था जो इस फिल्म से लिया गया था। और आर डी बर्मन का म्यूजिक कमाल धमाल बेमिसाल, जिसे आप सबने पसंद किया। और मुझे पता था, मैं जानती थी कि ये गाना जैसे ही बजेगा हमारी आंटी जी ज़रूर आएंगी, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन हैं और उनको उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो आंटी जी, आपको मेरा प्यार भरा सलाम, मोहब्बत भरा सलाम, और स्वागत है आपका इस शो में। और आप सबका भी स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है, तो मेरी नज़र आप सबके मैसेजेस पर है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। Feel good track brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye hai like a gold. तो चलिए फिर आपके धन्यवाद का, थैंक यू का सिलसिला शुरू करते हैं। ढेरों मैसेजेस मिले हैं मुझे हमेशा की तरह, लेकिन आंटी जी मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ। अंकल जी को पता है कि आप अमिताभ बच्चन की इतनी बड़ी फ़ैन हैं? अगर पता है तो ठीक है, कहीं मुश्किल ना हो जाए, मैं जस्ट ये जानना चाह रही थी। एनीवेज, दिव्या जी हैरो से हमारे साथ हैं, बेल्जियम से प्रीति हैं, SS भोगल जी हमारे साथ हैं, हमारे राजेश जी थैंक यू साथ देने के लिए कहते हैं कि आजकल हम बहुत ही चरम मौसम का अनुभव कर रहे हैं और भविष्य में गर्मी और बढ़ सकती है, और ये बढ़ रही है। अब देखिए, हर साल एक एक दो दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इंसानों का, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, जानवरों का क्या होगा? मुझे लगता है जो जितना स्ट्रांग होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी का हाल वैसे ही होगा जैसे हजारों साल पहले डायनासोर का हुआ। एनीवेज, आगे बढ़ जाते, अच्छी बातें करते हैं। मिथुन पटेल जी थैंक यू आपके मैसेज के लिए। हरी श्रद्धा जी कहते हैं हमें गाने अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अर्जुन जी, मृदु जी, हंसा जी, वियाना में अनिल सोनी जी, क्रॉइटन में महेंद्र जी, टोरंटो में हमारे उल्लास जी, थैंक यू मालती जी, आप कह रही हैं कि मैं आपका साथ दूंगी और गीतों को इन्जॉय करने के लिए, तो बस कोशिश करूंगी कि गाने अच्छे बजाऊं जिससे आपका संडे का ही जो मॉर्निंग के 3 घंटे बहुत अच्छे बीते, थैंक यू हिमांशु पटेल जी। और एक मैसेज आया है, हिमांशु पटेल जी ने भेजा है, डेडिकेशन है, कहते हैं जय श्री कृष्णा ऋतु शर्मा, आप चाहते हैं कि डॉक्टर निशा जी की बर्थडे को हम और भी अच्छी बना दें, जो कि आपकी नीस है, अपनी पसंद की गीतों के साथ। वाह क्या बात है, तो डॉक्टर निशा को हिमांशु पटेल जी एंड पूरी पटेल फैमिली की ओर से जन्मदिन की ढेरों ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और अगला गाना जो है मुकेश जी की आवाज़ में, वो डॉक्टर निशा आपको ही जाता है, लेकिन उससे पहले जल्दी से थैंक यू कहते चलें सुरजीत जी को, तोची जी को, प्रज्ञा जी को, शेखर जी को, एंड ऑफ कोर्स हमारी मिसेस शेख। चलिए ये गाना डॉक्टर निशा के साथ साथ आप सब के लिए। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जी हाँ, मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि जो आपको हो पसंद वही गाने बजाएंगे ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। और मुझे पता था कि यह गाना मुकेश जी की आवाज़ में सुनते ही हमारी मीना जी मैसेज डालेंगी। मीना लखानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। एंड सुमन बद्रेसा जी का कहना है कि ऋतु ये गाना मेरे नाम कीजिए। बिल्कुल आपके नाम पर गया। नरेंद्र बागिया जी थैंक यू, आज भी आप हमारे लिए चार लाइनें लिख कर लाए हैं। कहते हैं, अर्ज किया है, दोस्ती न कभी इम्तहान लेती है न कभी इम्तहान देती है, दोस्ती तो वो है बारिश में भीगे चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है। ओह माय गॉड, दैट्स सो नाइस, थैंक यू साथ देने के लिए नरेंद्र जी। एंड रोशनी, आप आई बाहर आई, आज बहुत रोशनी है, बहुत अच्छा मौसम है, सो थैंक यू, स्वागत है आपका भी। एंड विजय गुनोवा जी आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। एंड भरत गंगाराम जी गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग, आज मौसम बेहतर है, तो आई एम श्योर आप सब हमारा साथ दे रहे हैं, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, तो बस साथ देते ही रहिए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में सुनवाऊंगी जोड़ी नंबर वन, और आज की जोड़ी नंबर वन कौन सी है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: ये है Laika Gold.
3: Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Like a Gold.
0: तो भाई हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रेवल को याद रखिए, और दुबई के लिए उनकी बहुत अच्छी डील्स हैं क्योंकि दुबई में जाने के लिए अब रेस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, तो आप जरूर टिकट्स बुक कराइए। उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर, और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Ritu Sharma on Like a Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
11: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
10: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
11: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
10: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
11: Visit kajalscouture.co.uk.
12: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
13: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
11: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। Bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
14: Live in London.
10: Experience an unforgettable evening with the legendary Hari Haran.
14: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
10: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
15: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
16: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
17: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
18: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
17: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
4: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
21: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Laika Gold. Make it a date.

0: दरअसल नायक फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें आवाज अलका याग्निक की, और 90s के बहुत सारे खूबसूरत गीतों की आवाज बनी है अलका याग्निक, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's.

0: The sun is out. And so are the summer hits on Like a Gold.
1: सुनो
2: कहो
1: कहा
2: सुना
1: कुछ हुआ क्या
2: अभी तो नहीं।

0: राजेश खन्ना और मुमताज की सुपर हिट फिल्म आपकी कसम से था ये गाना, और उससे पहले आपने राजेश खन्ना की कमबैक फिल्म का गीत सुना जो थी सौतन। और लीजिए, इन दो बैक टू बैक गीतों के साथ प्रोग्राम का सेकंड आवर शुरू हो गया है, और आज आप सुनते हैं जोड़ी नंबर वन। और आज की हमारी जोड़ी है महेंद्र कपूर और लता जी की जोड़ी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा गीत नहीं गाए हैं। महेंद्र कपूर के साथ आशा जी के गाने बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज मैं आपको लता जी के गीत सुनवाने वाली हूँ। वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन आशा जी के मुझे लगता है ज़्यादा हैं। बट देखते हैं आज कौन से गाने बजने वाले हैं, क्योंकि दो गाने सुनवाऊंगी। और जब भी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का नाम सामने आता है तो मुझे सबसे पहले एक ही गाना दिमाग में आता है। आज मैं सोच रही थी कुछ और गाने आपको सुनवाऊँ, लेकिन वो गाना उन सभी गानों पे हावी रहा, इसलिए आज मैंने वो गाना चुना है और आज फिर से सुनवाऊंगी। बजेगा आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह कराना होगा ब्रांच जाकर या फिर योनो ऐप के थ्रू या फिर ऑनलाइन। और आप जून के एंड होने से पहले, जिसमें 2 दिन बचे हैं, 75 pounds का वाउचर जीत सकते हैं। हर रोज जब आप 1000 pounds से ज़्यादा ट्रांसफर करते हैं, या फिर आप 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक जीत सकते हैं जब आप 2000 pounds से ज़्यादा ट्रांसफर करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज मैच होने वाला है कोलंबिया और पोर्चुगल के बीच में, और दूसरा मैच होगा साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में। लेकिन आपको याद दिला दें कि आप भूलिएगा मत अपनी 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस लेना हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो के साथ, और ये सब होगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Ye hai
4: Leica Gold.
3: Leica Gold.

0: Atco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
3: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit kajalscouture.co.uk.
4: Welcome to the jungle.
5: Film bilkul fake.
4: Hamari film army wali.
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
4: स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यूथ स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
8: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
9: मैं किस लिए फिल्म में?
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
9: गारंटेड.
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
9: फोन 02085748410.
10: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
11: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइसली अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोअर होम लेस्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
12: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
12: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
15: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
15: In Dubai.
16: Chai break ho ya busy work day. Sabko chahiye ek perfect cup of chai.
17: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
16: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
17: Rich, authentic taste every single time.
16: Royal Chai, brewed for business.
17: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
18: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मां भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मां दर्शन नो लाभ. आप पवित्र यात्रा मां जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज. कॉल करो 02037736333. मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
19: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे Feel good track brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या ढोलक बजाई है, एंड की जो बिट थी उसमें क्या शानदार ढोलक बनाई है, बजाई है, जिसने भी बजाई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जब कोई गाना बजता है तो उसमें कितने सारे म्यूजिशियंस होते हैं, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं और जिनसे गाने की खूबसूरती निखर कर आती है, लेकिन हमें सिर्फ सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम याद रहता है, बाकी लोगों का तो हमें नाम भी पता नहीं रहता जिनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन गीतों को खूबसूरत बनाने में। तो आज उन सब के लिए बैठकर जोर से तालियां बजा दीजिए। इस ढोलक को सुनकर तो मुझे इतना मजा आया कि मैं सोच रही थी कि हाय, ढोलक जो होती है ना, तबला जो होता है ना, गाने की शान होती है और इसके बिना गाना बिल्कुल समझ लीजिए फीका है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो लीजिए, हमने ये गाना जे ओम प्रकाश की फिल्म आए दिन बाहर कैसे लिया था, जिसमें धर्मेंद्र थे और साथ में थी आशा पारिक, और आप सुन रहे हैं जोड़ी नंबर वन। आज महेंद्र कपूर और लता जी के गाने सुनवा रही हूँ जोड़ी नंबर वन में, और इस गाने को सुनकर हमारी किरण जी के चेहरे पर स्माइल आ गई है। क्यों मुस्कुरा रही है, कारण भी तो बताइए, क्या कुछ पुरानी यादें जुड़ी हैं इससे आपकी? लेकिन चलिए, थैंक यू साथ देने के लिए। प्रीति, आपको ये गीत पसंद है, और रानी कहती है कि बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैं वॉक कर रही हूँ और आपका शो सुन रही हूँ। तो रानी जी, मैं भी यही करती हूँ, जब मैं वॉक पर जाती हूँ ना तो मैं भी अपना ही शो सुनती हूँ लिसन बैक पर जाकर, क्योंकि उसमें मेरी पसंद के गाने होते हैं। तो आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं, थैंक यू। वरिता जी, आपका मैसेज मिला है। संध्या बावसर, थैंक यू। हरिश्रुदास, थैंक यू। और महेश जी कहते हैं, क्या बात है ऋतु, दो दिन से आप राजेश खन्ना के गाने बहुत बजा रही हो। तो महेश जी, कोई खास बात नहीं है, वो क्या है कि जब मैं प्लेलिस्ट देखती हूँ ना, तो मुझे अगर कोई भी गाना है जो कुछ दिन से नहीं बजा होता, बस मैं पकड़ कर बजा देती हूँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन आपने ये नोटिस किया, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू है ना। थैंक यू कैंट से सलमा जी, थैंक यू शर्फून, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कर रही हैं, हमारा साथ देते देते जरूर बताइए। भारती दीदी, थैंक यू। दिव्या जी, थैंक यू। सत्यनारायण सैनी जी, फरजाना एंड डॉक्टर माला एंड काशिफ जी, आप सभी का स्वागत है, एंड ऑफ कोर्स हमारी जासू जी। चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आज की जोड़ी नंबर वन का।
1: अक्रॉस ग्रेटर लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर, दिस इज ऋतु शर्मा।

0: तो बिल्कुल ये थे हमारे जोड़ी नंबर वन के दो गाने। आज महेंद्र कपूर और लता जी को बनाया जोड़ी नंबर वन, जो ऑलरेडी जोड़ी नंबर वन है। और आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। शरफून कहती है कि आज गार्डनिंग का दिन है, कुछ नए प्लांट्स लेकर आई हैं और उन्हें पॉट में डाल रही हैं। तो बिल्कुल ये सही मौसम है, क्योंकि गार्डन में अगर फूल खिले हों गुलशन गुलशन तो बहुत अच्छा लगता है, आँखों को बड़ा सुकून मिलता है देख कर। तो बस करते रहिए और आप हमारा साथ दे रही हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। जैस्मीन स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र पांचाल जी कहते हैं कि मैंने तो ढोलक वाले के लिए और सभी साज बजाने वालों के लिए तालियां बजा दी हैं। तो जो नहीं जानते उनको बता दूं कि हमारे नरेंद्र पांचाल जी भी बहुत सारी चीज़ें बजाते हैं, और जब भी कोई लाइव शो होता है उसमें मैंने आपको कई बार सुना है, और आप जो चीज़ें बजाते हैं उससे एक अलग ही मज़ा हो जाता है गाने में, एक अलग ही उस पर पहुंच जाता है गाना। क्या कहूँ, शब्द नहीं मिल रहा। सो थैंक यू साथ देने के लिए। और बस अब क्या करें, महेंद्र कपूर की बात हुई थी तो एक और गाना जो उनकी आवाज़ में बहुत पॉपुलर है, या कह दूँ अमर है, और बहुत दिन से नहीं बजाया, तो चलिए आज दिल कर रहा है उस गाने को सुनवाने का। सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
2: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: तो आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट हमेशा सुन रहे हैं, और इस बार नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है जिसका टाइटल है ट्रेडिशंस एंड टाबूज, और इसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। और याद दिला दें कि ये हमारा जो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट है वो अवेलेबल है सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर, आप उसे स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजन पर जाकर सुन सकते हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: ये है
4: Leica Gold
5: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Visit travelhubworld.com.
8: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
9: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
10: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
9: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
10: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
14: की कह रहे हो?
15: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट ढिल्लो फिर कहेंगे
16: पर ढिल्लो ने काला कोट एवं नहीं पाया।
13: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
17: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
18: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
17: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
18: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
17: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
18: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
17: Offer valid from the 4th of May to the 30th
9: 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram.
9: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamareRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
4: Exclusive radio partner, Like Our Radio.
7: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protected.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
19: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
20: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chicky, Pot Meals and much more.
19: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Radio Wally marks Pride Month, Truth and Taboos.
21: I felt like I had to get tougher skin from quite a younger age. But I think also like getting bullied, not bullied, but like name called, you kind of have to build that skin layer. Then like, you know, you have that family layer where you're a bit, you feel like you're a bit different. So you bring all the skin layers and you build more and more layers.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
22: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: हमारी हिवड़ा में नाचे मोर, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, हरिहरन और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म हम साथ साथ से लिया था, जिसमें एक नहीं दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड के सितारे थे और इस फिल्म को सूरज बड़जात्या ने बनाया था। राम लक्ष्मण का इसमें म्यूजिक था। और देखिए, जब भी किसी फिल्म में बहुत सारे सितारे होते हैं और वो भी जब सुपरस्टार्स होते हैं, तो सबको लेकर एक कहानी गढ़ना और सब में सामंजस्य बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सूरज बड़जात्या ने ये काम कर दिखाया। ये गाना आप सबने पसंद किया है और बड़े दिनों बाद इस गाने को आज शो में जगह मिली है। मिलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स और हमारे थ्री वर्ड्स गेम के साथ।
1: Across Greater London, this is Like a Gold, 10:35 AM, DAB

0: अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म लव स्टोरी से था ये गाना, जिसे राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च करने के लिए बनाया था। आरी बर्मन का म्यूजिक, और उससे पहले आपने सुना गीत गजब फिल्म का, जो गजब की फिल्म है। मैंने इस फिल्म को देखा है, धर्मेंद्र और रेखा की फिल्म है। कहानी बहुत सुंदर है और कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो आंखों में आंसू ले आते हैं। उसी फिल्म से लिया था वो गाना, जिसमें म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और लीजिए, बैक टू बैक दो गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपने बहुत सारे गाने मिस कर दिए हैं, लेकिन फिकर नॉट, लिसन बैक पर सुना जा सकता है, और वो कैसे मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल समय है आज के थ्री वर्ड्स गेम को शुरू करने का, तो तैयार है? जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये जो थ्री वर्ड्स होते हैं वो बॉलीवुड के किसी एक गाने से मैं लेती हूं, और उन तीन वर्ड्स की मदद से आपको गाना पहचानना होता है। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं, पहला है पैमाना, दूसरा वर्ड है दीवाना, और तीसरा है नजराना। 1970 में आई थी ये फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है। कौन सा है ये गाना? वर्ड मैं रिपीट करती हूँ, पहला वर्ड है पैमाना, दूसरा वर्ड है दीवाना, और तीसरा वर्ड है नजराना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, 1970 की फिल्म है, और रफ़ी साहब की आवाज़ है। अगर आपको पता चल गया है कि कौन सा गाना है, तो फटाफट अपना मैसेज आंसर लिखकर पहुंचाइए हम तक इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ट्रांसफर करवाना होगा बाय SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app, और इस मंथ के पहले पहले अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं तो आप 75 पाउंड का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। Terms and conditions भी apply रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Like a Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
4: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
5: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
4: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit kajalskachor.co.uk.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Welcome to the jungle.
6: Film, bilkul fake.
8: Hamare film army wali.
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
6: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
8: उस कार्ड का है
6: अक्षय अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यूथ स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
10: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
11: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
12: मैं किस लिए फिल्म में?
13: Great news, Thadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Raiders Lane.
14: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
15: Be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है?
18: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129 9840। TWPays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
19: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you and it could be you. You and then the same you. Again, you. One ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
20: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagoon.com.
21: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: बप्पी लहरी के म्यूजिक पर तोहफा फिल्म का था ये गाना, और ये गाना जितेंद्र पर पिक्चराइज था क्योंकि जितेंद्र ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: और हमारे कुछ साथी चाहते हैं कि थ्री वर्ड्स मैं फिर से रिपीट कर दूं, तो बता देती हूं जल्दी से। पहला वर्ड है पैमाना, दूसरा वर्ड है दीवाना और तीसरा वर्ड है नजराना। 1970 की फिल्म है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और रफी साहब की आवाज है। कौन सा है ये गाना? बहुत सारे साथियों ने पहचान लिया है, ऑलरेडी मुस्तक मैसेज भिजवा चुके हैं और वो कौन है उनका नाम जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल शुरू होगा आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और सुनवाते हैं आपको पहला गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: वैसे फिलहाल तो इस भीगी भीगी फिजा का हम सभी को भी इंतजार है, लेकिन आपने इस गीत को पसंद किया है। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, जिसे लिया था फिल्म अनुपमा से, म्यूजिक बाय हेमंत कुमार और आवाज आशा भोसले की। और चलिए अब सुनवाते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में ओपी नैयर के म्यूजिक पर नया दौर फिल्म का गीत था, जो था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और अब समय आ गया है साथियों के नाम लेने का, यानी कि जिन्होंने सही सही गाने को पहचान लिया है। तो मैं बताती हूँ कि किन्होंने आज सही जवाब दिया है, लेकिन उससे पहले ये जरूर बता दूं।
1: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
0: अगर आप हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो जरूर अपने टिकट्स बुक कराइए साउथ ओल्ड ट्रेवल से। आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए उन्हें, फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, और ये सब बिल्कुल एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk.
0: तो आज के जो हमारे थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना है उसे सबने पहचाना है। तृप्ति जी आपका आंसर सबसे पहले मिला है, बिल्कुल सही है। शरफून योर आंसर इज करेक्ट टू। अल उल्लास, मीना शाह, वत्सला जी, रजनीश, गुरशरण, दिव्या जी, हैरोसे, करसन पिंडोरिया जी, फरीदा गुलाम अली, नीलेश तन्ना, एस एस भोगल, अर्जुन जी, मनीषा शाह, रानी सोहानी, फरीद हुसैन, अयूब चौहान, सहर, प्रीति जी बेल्जियम वाली, और हमारे दिनेश पोपट जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने। और किरण जी हैरो से आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा भारती दीदी आपको दोनों ही गीत बहुत पसंद आए हैं, ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स, एंड थैंक यू किरण जी, बहुत धन्यवाद। अयूब चौहान जी कहते हैं कि मैं सुबह से आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आया। सहर योर आंसर इज करेक्ट यू। थैंक यू फरीद हुसैन जी, आप भी शो को इंजॉय कर रहे हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए। और चलिए बस थोड़ी ही देर में सुनवाती हूँ जो है आज के हमारे थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे लिया है मैंने फिल्म आन मिलो सजना से। बजता है थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Like a Gold TravelHubWorld.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: London, the wait is over.
5: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
4: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
5: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
4: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
5: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
4: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
6: Haldiram's.
7: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
4: But how? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
6: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
7: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
6: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
12: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना आनंद बख्शी साहब ने अपने कलम से लिखा था, और कमाल का ये खूबसूरत गाना। हालांकि कर्ज फिल्म का जब भी जिक्र होता है तो ओम शांति ओम और दर्द दिल कैसे याद ना किया जाए। हालांकि इस फिल्म की कहानी के बारे में अगर आपको बताएं, थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में बताएं, तो डायरेक्टर सुभाष घई ने इस फिल्म को बनाया था, इस आइकॉनिक फिल्म को बल्कि कहा जाए तो बनाया था 1980 में। और उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था काफ़ी सालों बाद कि फिल्म की रिलीज़ के बाद शुरुआती जो रिएक्शन थे वो उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। हालांकि उनकी क्या पूरे दर्शकों के, काफ़ी फैंस के, ख़ासतौर पर ऋषि कपूर साहब के फैंस को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें जो लगाई गई थी वो उम्मीदें टूट गई, जिससे पूरी टीम का मनोबल काफ़ी टूट गया था। इसका असर ये हुआ कि फिल्म जब इतनी कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही तो ऋषि कपूर साहब को भी इसका बहुत बुरा असर हुआ। सुभाष घई के मुताबिक ऋषि कपूर इस फिल्म की असफलता से लेकर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि डिप्रेशन तक में चले गए थे। हालांकि समय के साथ रिजल्ट जो हुआ वो कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बाद में ये फिल्म यानी कि कर्ज एक कल्ट फिल्म की सूची में शामिल हो गई, और बाद में ऋषि कपूर साहब ने भी इस बात को स्वीकारा, एक्सेप्ट किया कि भाई जो वो सोच रहे थे वैसा नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है फिल्म की ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी के जरिए उस फिल्म को लोग यानी कि उस दौर में दर्शक देखने जाने लगते थे, और धीरे धीरे वो फिल्म लोकप्रिय भी हो जाती थी। जैसे कि आप लोगों के इतने प्यारे संदेश हैं कि मज़ा आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सब मैसेजेस के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद रितु शर्मा जी का जो इससे पहले थी हॉट सीट पर। आप सुन रहे हैं गोल्डन राग, मैं हूँ आपके साथ अनुराग। अगला गाना रफी साहब की आवाज़ में, आज रोमांटिक मूड में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर इंडिया में आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आज एक £1 के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहा है 124 रुपीज़ एंड 20 पैसे। अगर आप SBI यूनो के थ्रू या फिर ब्रांच के थ्रू अपने पैसे भेजते हैं तो आपको £75 का वाउचर भी मिल जाएगा। इसके अलावा £1,000 के ट्रांजैक्शन पर आपको £75 का वाउचर, और अगर £2,000 का आप एक हफ्ते में लेन देन करते हैं तो 1 ग्राम का गोल्ड भी आपको मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
2: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
4: Like a gold.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
7: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
8: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
7: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
8: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.com. www.dubai.co.uk. Cashback remortgages. Your mortgage should work for you.
4: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
9: in Dubai.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026. At Watford Colosseum on Saturday, 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Laika Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
12: London, good news! Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Kerry, Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
15: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
16: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Laika Gold. Aur online suno laikagold.com pe.
17: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आपसे प्यार हुआ, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप सुन रहे थे आबरू फिल्म का ये गाना। 1968 में फिल्म आई थी और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर का भी नाम आपने बहुत कम सुना होगा। इन महाशय का नाम था सोनिक ओमी और गाने के बोल भी लिखे थे बहुत कम। आपने इनका भी नाम सुना होगा, G.L. रावल साहब। बहुत कमाल के गाने और म्यूजिक इसका और भी ज़्यादा शानदार। अगला गाना हम आपको सुनाते हैं, फिल्म का नाम है राजा रानी और इस गाने की भी है बड़ी प्यारी सी कहानी जो आपको थोड़ी देर में सुनाते हैं।
0: ऑन राग विद गोल्डन राग।

0: कमाल है भाई, आरडी बर्मन साहब और आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए बोल कमाल का इस फिल्म का संगीत। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटे मोटे चोर से, जो करेक्टर प्ले कर रहे थे राजेश खन्ना साहब, और पुलिस से बचते बचाते पहुंच जाते हैं जनाब एक जगह पर जहां पर शादी हो रही होती है, और गलती से इनकी शादी भी हो जाती है दुल्हन शर्मिला टैगोर के साथ जो किरदार प्ले कर रही हैं। और बाद में ये दोनों अपने अतीत को, अपने पास को छुपाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब वो कहानी इस गाने के साथ साथ जिसने इस फिल्म को देखा होगा उसे याद आ गई होगी। और काका का वो दौर था कि काका इतने ज़्यादा बिजी रहा करते थे अपनी अलग फिल्मों की शूटिंग में, उन्हें पता नहीं, उन्हें अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस होता ही था, साथ साथ अपने फैंस पे भी कॉन्फिडेंस होता था कि भाई जो भी फिल्म, जिस भी फिल्म में वो काम करेंगे, नज़र आएंगे, वो फिल्म हिट होनी ही होनी है। और राजा रानी को भी लेकर काका इतने आश्वस्त नहीं थे कि इतनी बड़ी हिट होने वाली है, खासतौर पर फिल्म के गाने कमाल के रहे। आगे बढ़ते हैं,
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: तो भाई जब सुरों की बात हो रही तो एक और सुर सम्राट हरिहरन साहब लौट रहे हैं यूके स्पेशल वन ऑफ इवेंट ऑन सैटरडे 4th जुलाई एट रॉयल फेस्टिवल हॉल होस्टेड बाय बीना मिस्त्री। गेट योर टिकट नाउ एट southbankcentre.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: मैं हूं अश्विनी, हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: I'm literally crying.
2: Same, but my bladder can't take these laughs. I may have to leave.
3: Wait, try one of my always discreet maximum protection pants. Total game changer when the floodgates open up.
2: Seriously?
3: It gives me complete peace of mind, even for my heaviest bladder leak surprises. Go try one on.
2: Fair play. And now I can stay until the last gag.
3: Try Always Discreet's new maximum protection pants for heavy bladder leaks.
4: Like a gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड, वेस्ट लंदन और इल्फर्ड, ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24-hour line.
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods, Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods, Hayes.
10: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟਪੋਟ ਕੀਤਾ,
11: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
10: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ,
11: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
12: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
13: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ.
10: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ.
14: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
15: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
16: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
15: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
17: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
18: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
19: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: किशोर दा और लता जी की आवाज में सगीना फिल्म का बड़ा ही नटखट शरारती सा ये नगमा। और अगले गाने के बाद आपको जलानी होगी अपने दिमाग की बत्ती, क्योंकि हम बताएंगे, आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेमफाई के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में 124.69 पाकिस्तानी रुपीस, 367.51 श्रीलंकन रुपीस, 443.82 बांग्लादेशी टका, 162.17 अफगानी, 85.62 एंड 1 US dollar 1.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: आज भाई गोल्ड यानी कि सोने के भाव हैं 99 pounds and 52 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. This is Leica Gold.

0: लता जी और मुकेश साहब की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। और इसी के साथ वक्त आ गया है आपको बताने का, हम बताएं और आप सुनाएं वाली थीम क्या आज का गोल्डन वर्ड। तैयार हो जाइए अपनी अपनी दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, और वो वर्ड है आज का जीवन। याद रखिए, जीवन से रिलेटेड आप गाने हम तक पहुंचा सकते हैं। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
2: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
1: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
2: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
1: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
2: Visit Kajal's Couture. .co.uk. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: London, the wait is over.
5: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
4: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
5: From Raj Kachori to Chole Bature, Pao Bhaji,
4: Paratha, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
5: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
4: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
6: Haldiram's. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963 757 Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
11: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
12: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
11: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
12: Rich, authentic taste every single time.
11: Royal Chai, brewed for business.
12: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
13: On Rug with Golden Rug.

0: big tournaments, and it's a shame.
1: I'm not surprised, and I think it was inevitable given the results we've had and the performances that we've had.
2: And the Williams sisters are back in action at Wimbledon tomorrow. Venus and Serena, who hasn't played for 4 years, will compete together in the doubles. They previously won two doubles titles together. From Sky News, I'm Leisha McKenna.
3: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
4: एक बार फिर से वेदर रिपोर्ट लेकर आपके लिए हाजिर। 25 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त का करंट टेम्परेचर ग्रेटर लंदन का। लाइट क्लाउड एंड मॉडरेट ब्रीज। सनसेट 9:22 पर।
3: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
4: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गोल्डन राग संग शुरू से सजी सुपर संडे वाली इस महफिल में। मैं हूं आपके साथ अनुराग। बैक टू बैक गानों के साथ करने जा रहे हैं इस घंटे की शुरुआत। आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है जीवन। याद रखें वैसे गाने हम तक पहुंच चुके हैं।
3: Leica Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
5: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
6: TravelHub.
5: At all protected.
3: Leica. On Rug with Golden Rug.

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: कमाल भाई किशोर दा की आवाज में बड़े दिल वाला फिल्म का ये खूबसूरत गाना हम तक पहुंचाया है सोमिला मुंगुर, फरीदा गुलाम अली जी, कमल और सौरभ जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। पहला गाना हमने आपको अपनी तरफ से सुनाया था एक दूजे के लिए, फिल्म का नाम और SP बालासुब्रमण्यम और आशा ताई की खूबसूरत आवाज़ों में। जैसे कि आपको पता है, आप बताएं, हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ल्ड जीवन है और हम तक बहुत सारे गाने पहुंच भी चुके हैं, बड़े ही प्यारे हैं। कोशिश कर रहे हैं उनमें से हम अच्छे अच्छे छांट कर आपको सुनाएं। अगला गाना मुकेश साहब और हेमलता जी की आवाज़ में, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ है आपके लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 124 रुपीज़ एंड 20 पैसे। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Gold.
1: Leica Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: FIFA के दीवानों के लिए Super Sunday, South Africa और Canada के बीच रात 8 बजे मैच और Colombia और Portugal के बीच भी आज एक मुकाबला। Don't forget to you can get your 15-minute free legal advice with our sponsor Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: To whoever finds this letter, my car broke down. There is nothing nearby. And I've already eaten my meal deal sandwich. Please tell my wife that I love her and that she was right. This jacket isn't waterproof. Signed, Daniel. Yes.
5: Oh, actually, scrap that. Green flag's just arrived. Blimey, less than an hour.
6: Local rescue, nationwide. Nothing beats near. Green flag.
7: On average, we get to breakdowns in under an hour based on app and phone call outs combined. See greenflag.uk/data.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
8: Southall travel, 7 days a week. Southall travel, 24 hours a day.
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Southall Travel.
10: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Gorgeous Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
11: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
12: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
11: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
12: Gorgeous Couture Southall, where every occasion find its perfect style.
11: Visit gorgeouscouture.co.uk.
13: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
14: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
13: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
14: And you didn't pay those massive roaming charges?
13: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
15: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
16: वेलकम टू द जंगल।
17: फिल्म बिल्कुल फेक।
16: हमारी फिल्म आर्मी वाली
18: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
17: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
16: स्टार कास्ट है
17: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
19: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
17: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
20: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
21: किस लिए फिल्म में
15: Great news, Tadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinna, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tadikalal Raiders Lane. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
20: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
15: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
20: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
15: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
20: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
15: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
21: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
22: Eviction? Tenant dispute? Property ka masla? Kenton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
23: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
24: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहा है.
25: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तमने लई जाए आप पवित्र यात्रा पर.
24: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर
25: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
24: दर्शन पण अने यूरोप पण
25: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ही बुक करो स्टार टूर साथे.
24: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर.
25: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
26: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
27: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Mukesh saab, Hemlata ji ki awaaz mein Vishwas film ka ek gaana hum tak apne फरमाइश के पिटारे से निकाल कर भिजवाया था सुमित चौरसी, अब पंकज वर्मा और सालिम अख्तर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। अगला गाना बड़ा ही प्यारा, मोस्ट डिमांडिंग आज की थीम को ध्यान में रखते हुए।
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: लेकिन उससे पहले लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागा सेंट। डिटेल्स एट laikaradio.com।
0: On Rag with Golden Rag. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: रफी साहब और लता जी की आवाज में जीवन मृत्यु फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना भी आप सुन रहे थे, और ये गाना हम तक पहुंचाया है अमित पटेल, कुसुम पटेल, रानी और सचिन जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही। अगला गाना किशोरदा की आवाज में बड़ा ही डिमांडिंग गाना है आज की थीम को ध्यान में रखते हुए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 124.79 पाकिस्तानी रुपीस 367.39 श्रीलंकन रुपीस 443.66 बांग्लादेशी टका 162 एंड 1 US डॉलर 1.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £99.52 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Leica Gold.
1: This is Leica.

0: किशोरदा की आवाज में बड़ा ही मन को शांत करने वाला गाना पिया का घर फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे। फिल्म का संगीत आया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की तरफ से और ये गाना हम तक पहुंचाया है अर्जुन साहब, सीमा जी, संतोष जी, टोची पनेसर, सफरून एंड हंसा वोरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम है शोर और ये गाना हम तक पहुंचाया है नीलम जी और कीर्ति जी ने। अगला घंटा याद रखें गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस कर रहे हैं आपका इंतजार।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
5: London, the wait is over.
6: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
5: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
6: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
5: Paratha, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
6: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
5: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
7: Haldiram's.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
12: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
12: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
13: London, you asked and it's happening. Aditya Garvi Garba Tour UK 2026.
14: Lattuke halo ne nandala.
13: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Meetha khara, khara. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Laika Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Garvi live in London. Book now on AXS. Aditya Garvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
15: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
7: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
13: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
16: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com.
17: On Rag with Golden Rag.

0: रिपोर्ट कह रही है 25 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त का करंट टेम्परेचर, ग्रेटर लंदन का लाइट क्लाउड एंड जेंटल ब्रीज, सनसेट 9:22 पर।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गोल्डन राग संग शुरू से सजी सुपर संडे वाली इस महफिल में। मैं हूं आपके साथ अनुराग। एक बार फिर से कर रहे हैं इस घंटे की शुरुआत बैक टू बैक गानों के साथ और उसके बाद हम बताएंगे आपको आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस, क्योंकि आपसा कोई प्यारा नहीं है।
2: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. On Rug with Golden Rug.

0: क्या बात है भाई, किशोर दाव आशा दाई की आवाजों में घुंघरू की आवाज, फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना। और इसी के साथ हमें आपको बताना आज के गोल्डन दाग के तीन ऑप्शंस, लेकिन उससे पहले क्या दे प्लस कानून जल्दी से बताते हैं आपको। वो ये है कि हम आपको तीन ऑप्शन देंगे गानों के, ए बी एंड सी। जो भी आपको ऑप्शन पसंद आए उसे वोट की तरह कास्ट करें, और जिस वोट को लेकर सबसे ज्यादा हमारे पास काउंटिंग होगी, रिसीव होंगे वोट्स, वो गाना बनेगा हमारा हमेशा की तरह आज का गोल्डन राग। बहुत ही प्यारे गाने ढूंढ कर लेकर आए हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए है आज के गोल्डन राग का, तेरे बिना जिया जाए ना, फ्रॉम द फिल्म घर, लता जी की आवाज में कमाल का ये गाना। ऑप्शन बी है जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है, फिल्म का नाम है लाड साहब, रफी साहब की आवाज। ऑप्शन सी है तेरे नाम का दीवाना, फिल्म का नाम है सूरज और चंदा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है तेरे बिना जिया जाए ना, फिल्म का नाम है घर। ऑप्शन बी है जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है, फिल्म का नाम है लाड साहब। और ऑप्शन सी है तेरे नाम का दीवाना, फिल्म का नाम है सूरज और चंदा। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। अगला गाना हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक जंपिंग जैक, जीतू साहब की फिल्म का, किशोर दाव और लता जी की आवाज में। इत्मीनान से गाना सुनिएगा, बहुत ही प्यारा गाना है। फिल्म का नाम जस्टिस चौधरी, और पूरी तरह से जस्टिस करेगा हमारे लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज के दिन एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं आपको 124 रुपीज एंड 20 पैसे। याद रखें आपको 75 पाउंड का वाउचर भी रिसीव होगा अगर आप सेंड करते हैं यहाँ से अपनी मनी 1000 पाउंड के आसपास। अगर 2000 के आसपास आप पूरे वीक में सेंड करते हैं तो आपको 1 ग्राम गोल्ड कॉइन जीतने का भी मौका मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: फीफा कप साउथ अफ्रीका और कनाडा का अगला मैच 8 बजे, इसके अलावा कोलंबिया और पुर्तगाल के बीच में भी कड़ा मुकाबला।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Leica Gold.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410। साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.

0: किशोरदा और लता जी की आवाजों में पूरी तरह से जस्टिस करता ये गाना जस्टिस चौधरी फिल्म से था। 1983 में फिल्म आई थी। कमाल का ये खूबसूरत सा नगमा एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। आज के गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शंस, ऑप्शन ए है तेरे बिना जिया जाए ना लता जी की आवाज में, घर फिल्म का ये गाना है। ऑप्शन बी है जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है, फिल्म का नाम है लाड साहब। ऑप्शन सी है तेरे नाम का दीवाना, फिल्म का नाम है सूरज और चंदा। और जब तक सूरज आपको नजर आ रहा है चंदा आने से पहले अपने ऑप्शन हम तक भेज दें, यानी कि वोटिंग लाइंस ओपन हैं, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। और थोड़ी देर बाद हम आपको अपने करस्पोंडेंट कमल प्रभाकर जी से भी बात कराएंगे और जानेंगे क्या चल रहा है T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप के इस मैच में।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Is travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
4: And it's 20 minutes till next kickoff.
5: Go, go, go. Feed the gang. Pop to Co-op. Co-op members get 2 pizzas and 4 Budweisers for a fiver. Co-op. Owned by you, right by you.
6: Ends 21st of July. Selected products subject to availability. Co-op group membership required. £1 joining fee. 18 plus. Please drink responsibly. See co-op.co.uk/summer.
7: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
8: TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
9: TravelHub. Best service with unbeatable price.
8: At all protected.
9: Visit TravelHubWorld.com.

0: कमाल है भाई, लता जी की आवाज में घर फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना आर डी बर्मन साहब का इस फिल्म के लिए था संगीत, और फिल्म में नजर आए थे विनोद बेहरा और रेखा जी। और इस गाने को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं उनका हम नाम लेते हैं, हंसा वोरा जी, उल्लास जी, के भामरा, विजय घुनोवा जी, रानी सुनाहे, अर्जन साहब, सकू जोशी, जगतार सिंह सांघा, अंजलि, सुमित चौरसिया, कंचन, पंकज वर्मा, प्राची, दामिनी एंड सालिम अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी, मेरी आपकी मुलाकात होगी वीकेंड वाली पाठशाला के साथ, और साथ साथ सुपर संडे वाला संडे भी होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा जुड़े रहें लाइका परिवार के साथ।
1: Hey there, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Lyca Gold and Lyca Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
2: London, the wait is over.
3: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
2: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
3: From Raj Kachori to Chole Bature, Pao Bhaji,
2: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
3: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
2: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
4: Haldiram's.
5: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Lyca listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: Dreaming of paradise?
11: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
10: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
11: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
10: At all protected.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
13: Be part of a historic grand opening.
14: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
13: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
14: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
16: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटेटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटेटो चिप्स नाउ।
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
18: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
19: Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
20: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Sarita Samuel.
2: जी हाँ, सरिता हाजिर है आज के प्रोग्राम के साथ। मुझसे पहले हॉट सीट पर थे अनुराग एंड दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर आपने साथ दिया नीरज का, वहाँ है एनिका और यहाँ है सरिता सबरवाल। आपका साथ दे रही हूँ, जिस भी जगह बैठे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इंजॉय कीजिएगा नेक्स्ट थ्री आवर्स।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
2: TravelHub.
3: At all protected.
1: Leica. Sarita Sabharwal.

0: गुड आफ्टरनून। आपने दो बैक टू बैक गाने सुने और उम्मीद करती हूँ दोनों गीतों को खूब इंजॉय भी किया। पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म हैना और दूसरा गीत था फिल्म गुलाबी का गुलामी का। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल गेट वेल सून। If you're feeling bit down, तो come on, cheer up. Life is to live, life is to enjoy. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए ये गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता आप ही के लिए। जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, लंदन में है, मिडलैंड्स में है, मैनचेस्टर में है, जहाँ भी हैं आप, मुझे उम्मीद है कि लाउड एंड क्लियर ये आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है। नेक्स्ट 3 आवर्स हमारे और आपकी मुलाकात के हैं और इस मुलाकात को हसीन बनाने के लिए मैंने चुन चुन कर आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है। उम्मीद करती हूँ इन गीतों को आप पसंद करेंगे। राइट, हैना और गुलामी, ये दोनों गीत मैंने क्यों शामिल किए? पहली बात तो ये कि ये दोनों फिल्में आज ही के दिन रिलीज हुई थी। हैना वॉज रिलीज ऑन 28th of June इन 1991। रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था इसकी स्टोरी को हसीना मोइन एंड जितेंद्र जैन के साथ मिलकर। This was produced by Randhir Kapoor and Rajiv Kapoor, starring Rishi Kapoor, Zeba Bakhtiar and Ashwini Bhave. And इसमें जो narration थी फिल्म के अंदर वो शम्मी कपूर साहब की आवाज़ थी। Music था रविंद्र जैन का। उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया। सभी गाने इस फिल्म के वैसे बहुत खूबसूरत थे लेकिन मैंने चुना था इस गीत को। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। ये भी बता दूँ कि मैं हूँ खुश रंगे हिना वॉज लिस्टेड 7 ऑन बिना का गीतमालाज एनुअल लिस्ट इन 1991। गुलामी वॉज अनदर फिल्म जेपी दत्ता साहब ने बनाई थी। ये फिल्म स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्टोरी सब कुछ जेपी दत्ता साहब की थी। एंड इस फिल्म में काम किया था धर्मेंद्र जी ने, मिथुन चक्रवर्ती थे, कुलभूषण घरबंदा, स्मिता पाटिल, रीना रॉय, अनीता राज, रजा मुराद और भी बहुत सारे स्टार्स थे। एंड इसमें जो नरेशन थी वो थी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और ये खूबसूरत से गीत लिखे थे गुलजार साहब ने। जी हाँ, गुलजार साहब ने गीत लिखे थे। एंड ये गाना ख़ास तौर पर जो मैंने प्रोग्राम में शामिल किया, इसे गाया था लता जी एंड शब्बीर कुमार ने और ये गाना काफ़ी मशहूर भी हुआ। और अब जो मेरे साथी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं क्या कॉमन है आज के गीतों में, तो आज के प्रोग्राम के इस सावर में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन यही है कि ये फिल्में आजकल में ही रिलीज़ हुई हैं। तो अगला कौन सा गीत आ रहा है, किस फिल्म से है, ये मैं बता देती हूँ। कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे बहारों के सपने फिल्म का गीत। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बहारों के सपने का कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद आएगा। आजा पिया तो ही प्यार दूँ या फिर चुनरी संभाल करी, याद है ये गाना? बड़ा अरसा हो गया है मैंने इसे प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। अगर आपने हाल ही में सुना है तो वो और बात है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई भी गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आप इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 125 rupees and 20 paisas। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds। ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
1: Leica Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: राइट भी आजकल फीफा के चल रहे हैं ये जो मैचेस चल रहे हैं फुटबॉल के, उसके बारे में बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ग्रुप जे का जॉर्डन एंड अर्जेंटीना के बीच मैच हुआ, अर्जेंटीना 1-3 एंड ग्रुप के का DR कॉन्गो और उज्बेकिस्तान के बीच में मैच था, 3-1 से जीते, एंड कोलंबिया एंड पोर्चुगल के बीच में मैच हुआ आज और दोनों नील 1-1 था। एंड रात को मैच होने वाला है, 8 शुरू होगा साउथ अफ्रीका और कैनेडा के बीच मैच, एंड आज ही होगा अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच, हो चुका है ये 3-3 से ये मैच ड्रॉ हुआ। और अब ये भी बता दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: London, the wait is over.
5: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
4: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
5: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
4: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
5: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
4: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
6: Haldiram's.
7: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Welcome to the jungle.
12: Film? बिल्कुल fake.
11: हमारी film army वाली.
13: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
12: Danger? एकदम real. और survival skills? Zero.
11: और star cast है?
12: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
14: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
12: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
15: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
16: किस लिए फिल्म में?
17: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
18: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
19: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
6: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
16: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
6: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
20: Sonatours.co.uk 13 days Vietnam and Cambodia. Departures every month September to December. First 10 bookings get 100 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
21: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagold.com.
22: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Subaharon ki sapne film se geet aapne suna aur awaazein thi Manna Day saab ki aur Manna Day saab ka saath kisne diya tha? Kya aapne awaaz pehchani thi ya nahi? एक ही तो आवाज़ है जो एकदम दिल में उतरती है, वो है लता जी की आवाज़। और अब मैं शब्बीर कुमार और लता जी की आवाज़ों में गाया हुआ वो सात दिन फिल्म का गीत सुनवाने जा रही हूँ। ये फिल्म 23 ऑफ जून को रिलीज़ हुई थी इन 1983, जिसमें अनिल कपूर थे, पद्मिनी कोल्हापुरी थी एंड और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे। बहुत खूबसूरत फिल्म थी एंड सभी ने बहुत पसंद भी किया था इस फिल्म को। बापू थे डायरेक्टर इस फिल्म के एंड रिटन बाय जैनेन्द्र जैन, उन्होंने डायलॉग्स भी लिखे थे। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एंड आनंद बख्शी साहब के लिखे गीत। और ये गीत आप तक कौन पहुंचा रहे हैं ये भी मैं बता देती हूँ। ये हैं
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोकानू।

0: शबीर कुमार एंड लता जी की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना फ्रॉम द फिल्म वो सात दिन, जो 23 जून 1983 में रिलीज़ हुई थी। गीत आपको पसंद आया ये जानकर खुशी हुई। जिन मेरे साथियों ने बहारों के सपने का चुनरी संभाल गीत को वोट्स दिए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: अब मैं दो गीतों की और चॉइस दे रही हूँ। प्यार किए जा फिल्म के दोनों गीत मुझे पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सा गीत आप तक पहुँचाऊँ। फूल बन जाऊँगा शर्त ये है मगर, और दूसरा गीत गोरे हाथों पर ना जुल्म करो, वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में था। दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, जल्दी से वोट दे दीजिए।
3: Welcome to the Money Supermarket Training Academy, where we put our new recruits through their paces, training them to be their very best at saving the nation money, turning them into deal-finding hotshots, and teaching them how to come up with fantastic rewards for our customers.
4: Is this
3: the Money Supermarket Training Academy? Absolutely. Come in!
5: Money Supermarket, where better off begins. Download the app today. Rewards include prepaid MasterCard, qualifying purchase with logged in account, 18 plus UK only, see site for T's and C's.
6: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
7: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, hum se sasta kahi nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833. Or visit TravelHubWorld.com.
8: TravelHub, best service with unbeatable price.
9: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.
10: Chalo jaiye ek nava safar par.
11: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
12: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
11: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
12: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
11: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
13: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
14: Lattuke halone nandala.
13: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
14: Meetha khara, khara.
13: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
15: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods, Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods, Hayes.
16: कॉमेडी मूवी की गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
17: की कह रहे हो?
16: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
17: की कह रहे हो?
18: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
17: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
16: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
19: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
21: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket.
4: So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
9: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
21: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
22: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
23: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

0: आशा भोसले, शबीर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज़ें आपने सुनी इस गीत में, जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म खुली एंड 1983 में आई थी ये फिल्म। और प्रोग्राम के इस आवर का आगाज़ हुआ फिल्म अनमोल के गीत के साथ, जो 1993 की फिल्म थी। अनमोल फिल्म में थे ऋषि कपूर और साथ में थी मनीषा कोइराला, एंड उस फिल्म को भी बनाया था मनमोहन देसाई जी के बेटे केतन देसाई ने। वेल, जहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन थी तो 28th of June था कि उनका बर्थडे आज है, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया कि उनका बर्थडे कल है, 29th June को। तो बाली जी अपने प्रोग्राम में तफसील से उनका प्रोग्राम करेंगे ज़रूर, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए अब ये गाने मैंने क्यों किए हैं तो आप तक पहुँचा ही देती हूँ। सो केतन देसाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे, एंड उनके फादर भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। मनमोहन देसाई का नाम कौन नहीं जानता है, तो बाकी के गीत मैं जो है मनमोहन देसाई जी की फिल्मों के आप तक पहुंचाऊंगी। सो हम उन्हें एडवांस में ही आज बहुत बहुत बर्थडे की बधाई देते हैं। उन्होंने बनाई फिल्म कुली, मर्द, अल्लाह रखा, तूफान, अनमोल, दीवाना मस्ताना एंड ये है जलवा। उम्मीद करती हूँ कि आप फर्स्ट आवर से ही मेरा साथ दे रहे हैं। अगर अभी अभी सुनना शुरू किया है तो आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों गीत ही नहीं बल्कि लास्ट आवर के भी सारे गाने आपने पसंद किए, इंजॉय किए। किसी ने इन गीतों के साथ डांस किया होगा, किसी ने इन गीतों के साथ साथ गाया होगा, किसी ने वैसे ही बैठे बैठे ज़रा मटक गए होंगे। चलिए, जो कुछ भी किया, अच्छी लगी आपको गीत, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकर। बहुत सारे मैसेजेस स्क्रीन पर हैं, अगर मैं नाम लेने लगी तो बस नाम ही लेती रह जाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी बराबर मुझे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, थैंक यू। इसी तरह से अपने मैसेजेस भेजते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आज आप पैसे भेजना चाहते हैं, योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 124 rupees and 25 paisas, एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन यू आर सेंडिंग ओवर 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: राइट, आज के मैचेस के बारे में मैं अर्लियर ऑन भी आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि आज रात को मैच होने वाला है, 8 बजे शुरू होगा साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में, एंड आज ही मैच होना है अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। रात हो चुका है, ये 3-3 ऑल था इनका स्कोर, और जॉर्डन एंड अर्जेंटीना के बीच में मैच हुआ, एंड अर्जेंटीना 1-3, एंड साथ में कोलंबिया एंड पोर्चुगल में भी मैच हुआ, दोनों का स्कोर नील रहा। सो जैसे जैसे आगे मैचेस होते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रेक लॉ इफ़ यू मैंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the 4th time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife and little Freddy.
4: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
2: Leica Gold.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
1: साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
6: वेलकम टू द जंगल।
7: फिल्म बिल्कुल फेक,
6: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
8: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
6: और स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
9: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
10: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
11: मैं किस लिए फिल्म में?
12: London, the wait is over.
13: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
12: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
13: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
12: Parathas, sweets and so much more. Your favorite Indian flavors are now here.
13: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
12: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
14: Haldiram's.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: फिल्म सच्चा झूठा से चुना था मैंने इस गीत को एंड मनमोहन देसाई साहब ने बनाया था इस फिल्म को. इफ़ यू डू रिमेम्बर इस फिल्म में कौन कौन थे, राजेश खन्ना, मुमताज एंड विनोद खन्ना. बहुत खूबसूरत फिल्म थी, भाई बहन के प्यार का भी इसमें बहुत अच्छा नाज थी शायद, आई थिंक सो, जो सिस्टर का जिन्होंने रोल किया था. बहुत खूबसूरत फिल्म थी. एंड मनमोहन देसाई वॉज नोन फॉर हिज फैमिली सेंट्रल फिल्में बनाते थे, एक्शन सॉन्ग एंड डांस फिल्म्स एंड विच केटर्ड द टेस्ट ऑफ इंडियन मासिस को अट्रैक्ट ज़्यादा करते थे. हिज मूवीज डिफाइंड अ न्यू जॉनरे कॉल्ड मसाला फिल्म्स एंड अ कॉमन थीम इन हिज फिल्म्स वर द लॉस्ट एंड फाउंड plot where family members would be separated and then reunited. Then pehli film inhone banayi thi Janam Janam Ke Phere, jisme Nirupa Roy and Mahipal the. Then Chaliya in 1960, Bluff Master, bahut khoobsurat film thi wo bhi, Shami Kapoor ke sath banayi. Badtameez banayi thi Shami Kapoor saab ke sath, and Kismat with Biswajit and Babita. सच्चा झूठा, राजेश खन्ना एंड मुमताज, रामपुर का लक्ष्मण, ऐसी बहुत सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की थी. पर मैंने एक और चॉइस देनी है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ दो गीतों में से कि बदतमीज़ का मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत आप सुनना पसंद करेंगे, बदतमीज़ कहो या कहो जानवर ये वाला गीत, या फिर छलिया का गाना तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के. कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है मुझे ज़रूर बता दें. फिलहाल मैं आप तक पहुँचाने जा रही हूँ फिल्म रोटी से गाना, और रोटी का भी ये गीत बहुत खूब रहता है. इस फिल्म में भी मुमताज एंड राजेश खन्ना ने काम किया था, साथ में थे ओम प्रकाश, विजय अरोड़ा एंड निरूपा रॉय एज वेल. तो आइए सुनते हैं ये गाना एंड फिर क्रिकेट का हाल भी आपको बताएंगे. पर पहले ज़रा जल्दी से मुझे बता दें कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, बदतमीज़ का गीत या छलिया का गीत. बदतमीज़ का टाइटल ट्रैक एंड छलिया का तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के. और आज के प्रोग्राम का अगला गीत मैं करने जा रही हूँ सुनीता एंड सतीश जी के नाम, जो टोरंटो से यहाँ लंदन आए हुए हैं. वेलकम. एंड साथ में हैं मिसेस अशोकता मल्होत्रा जो दिल्ली से यहाँ आई हैं, उनका भी स्वागत है. उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है.
0: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक अ गोल्ड.

0: किशोर दयान लता जी की आवाज़ से फ्रॉम द फिल्म रोटी मुमताज एंड राजेश खन्ना पे ये गाना पिक्चराइज हुआ था। सतीश जी आपको और सुनीता जी आपको बहुत पसंद आया ये गाना, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। आप टोरंटो से आए हुए हैं गोइंग फॉर क्रूज, आई हैव लवली हॉलीडेज एंड अशोकता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे जो एक्सपर्ट हैं हमें क्रिकेट से वाकिफ़ कराने वाले वो हैं हमारे कमल प्रभाकर जी जो लाइन पर आ चुके हैं और आज तो बहुत बड़ा मैच हो रहा है और लॉर्ड्स में हो रहा है, ये लॉर्ड्स में खड़े हैं वहाँ पर और इनके साथ शायद रेडियो वाली भी है, तो ज़रा जान लें कमल जी से कैसे हैं। कमल जी क्या चल रहा है इस वक्त?
1: सरिता जी बड़ा एक्साइटमेंट मैच चल रहा है अभी, बहुत अच्छे टाइम में आए अभी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग चेस कर रहे 170 for 4,
0: आई नो
1: ऑस्ट्रेलिया 154 for 317 ओवर में और 18 बॉल रह गए, 17
0: बॉल्स रह गए
1: जी। एंड रही सरिता जी इधर 27,000 सपोर्टर्स है, उसमें 2,000 ऑस्ट्रेलिया के और बाकी के इंडिया ब्लू शर्ट्स ऑल ओवर
0: जी
1: फॉर वुमेन्स, दिस इज अ रिकॉर्ड इन लॉर्ड्स फॉर 27,000 पीपल, इट्स अमेजिंग फॉर अ विनिंग्स क्रिकेट, यू नो बहुत अच्छा गेम जो चल रहा है एट अ वेरी हाई लेवल, बहुत फैंटास्टिक टीम। सो देखो क्या होता है,
0: लेट्स सी ओनली 16 बॉल्स रिमेनिंग एंड 15 रन्स टू चेस, सो लेट्स सी कि कौन जीतता है, इंडिया जीता है या ऑस्ट्रेलिया जीतता है। थैंक यू एवर सो मच। और अर्लियर ऑन बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ जो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया 4 विकेट से।
2: Thank you, Jita. This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full-week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Sarita Summerwall with your weekend classics.
4: Like a gold, like a gold.
2: Like a extra podcast update.
0: राइट, आपको बता दें कि एपिसोड 22 इज आउट नाउ, प्राइड मंथ टाइटल है इसका, ट्रेडिशंस एंड टैबूज। रेडियो वाली इज़ द होस्ट फॉर दिस प्रोग्राम एंड आप ज़रूर देखिएगा, बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एंड एपिसोड में क्या क्या है ये आप जब देखेंगे तो आप सभी जान जाएंगे। लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर major streaming platforms.
2: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: There's never a good place to break down.
6: Oh, not now.
5: Especially not in the blistering heat with a car full of kids on the way to the game and you're blocking the player's car park.
7: You can't park there.
5: But it's okay when you're with the AA. With more expert patrols in more places, we'll get you back on the road in no time. Join the UK's best breakdown service from £5.99 a month. Visit theaa.com. New customers only. 10% of customers pay £5.99 a month. T's and C's apply. Verify best and patrol numbers at theaa.com/best.
8: Ye hai.
4: Like a gold.
8: Like a gold.
9: Travelhubworld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on Travelhubworld.com. Flights and holidays. Hum se sasta kahi nahi mil sakta. Call Travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
10: Travel Hub, best service with unbeatable price.
11: At all protected.
10: Visit travelhubworld.com.
12: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
13: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
7: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आउंदा है। ओ मूवी जिने सबनु हसा हसा के लोटपोट कीता।
11: की कह रहे हो?
7: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
11: की कह रहे हो?
14: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
15: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
7: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
16: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
17: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
18: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
17: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
18: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
17: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
18: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
19: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
20: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Dutch. Look. Check. Touch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
21: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
22: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, एक गीत फ्रॉम द फिल्म मन, मन का टाइटल ट्रैक, बहुत खूबसूरत गीत था अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज़ों में गाया हुआ गीत, 1999 की फिल्म थी, आमिर खान थे इस फिल्म में और मनीषा कोयराला। एंड दूसरा गीत लूट मार से चुना था, 1980 की फिल्म थी, आशा जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत, जब छाए मेरा जादू। भाई मेरा जादू नहीं, ये गीतों का जादू है जो छाया हुआ है आपके दिलो दिमाग पर, और आप मुझे हर गीत के बाद मैसेज लिखते हैं, वाह सरिता वी लव दिस सॉन्ग, इतनी दिन हो गए सुना नहीं था, थैंक यू एवर सो मच कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, शुरू से 4 बजे से लेकर अब तक मेरे साथ हैं, थैंक यू आप सभी का। बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी। हाँ अभी अभी मैसेज मुझे मिला है, सुखमिंदर फ्रॉम रेडिंग लिखती हैं कि मेरे पापा आए हैं इंडिया से अभी अभी, आप प्लीज़ उनको वेलकम कर दें। तो यस डेफिनेटली पखर सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं हम लंदन में, जितने दिन भी रहें आप खूब इंजॉय कीजिएगा। और अब प्रोग्राम के बाकी के गाने भी बहुत खूबसूरत हैं, इंजॉय करेंगे, लेकिन पहले कुछ और भी काम करने होते हैं ना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट अभी इस वक्त आपको अगर पैसे भेजने हैं SBI के जरिए तो £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 124 rupees and 20 paisas एंड सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर £1,000 ऑल्सो अ 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: राइट आपको बता देंगे साउथ अफ्रीका एंड कनाडा के बीच में मैच होने वाला है, रात 8 बजे शुरू होगा। एंड जॉर्डन एंड अर्जेंटीना 3-1 से अर्जेंटीना जीते हैं। एंड DR कॉन्गो एंड उज्बेकिस्तान में DR कॉन्गो 1-3 एंड कोलंबिया एंड पोर्चुगल में दोनों का स्कोर रहा नील। सो अगर आप रैक लॉ से कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ़ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: London, the wait is over.
4: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
3: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
4: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
3: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
4: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
3: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
5: Haldiram's.
6: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
7: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
6: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
7: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
6: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
7: Visit Kajal's Couture.
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग. रागासन,
10: द वॉइस दैट touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208907244. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208907244.
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स. क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
16: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत मैंने जिगरी दोस्त फिल्म से चुना था। जिगरी दोस्त डायरेक्टेड बाय रविकांत नगरीचा एंड इस फिल्म में काम किया था जितेंद्र जी ने, साथ में थी मुमताज़ एंड पूनम सिन्हा। बहुत खूबसूरत फिल्म एंड इसके गाने बड़े अच्छे थे एंड उन्हीं में से मैंने चुना इस गीत को। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का था संगीत। आर्टिस्ट ऑफ द वीक जितेंद्र जी की आज मैंने इस गीत को जगह दी अपने प्रोग्राम में।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: क्लासिक हिट गाना जुगनू फिल्म से चुना था, 1973 की फिल्म हेमा मालिनी एंड धर्म जी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ।
3: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
2: साउथ ओल्ड ट्रैवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई। कॉल साउथ ओल्ड ट्रैवल फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: We've all been there. Noisy uni flatmates, music blaring, phones going off in the library. But with long-lasting battery life on the lightweight and portable Dell XPS powered by Intel Core Ultra, you can get away from the distractions without needing to find a plug. So you can get back to, well, built for those who get things done. The Dell XPS. Built for you. Dell.co.uk/learning.
5: लाइका गोल्ड
6: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट travelhubworld.com।
8: चलो जाइए एक नवा सफर पर
9: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
10: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
9: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
10: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
9: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
11: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
12: Lattuke halo ne nandala.
11: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
12: Meetha khara, khara.
11: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
13: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
14: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
14: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
14: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
14: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: Teachers, tutors or educators ke liye ek special opportunity. RoboThink UK expand kar raha hai. Become a confirmed franchise partner and receive a robotics kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off on full week summer camps with code LAIKA10. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
18: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही
1: कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02208767627।
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
18: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भाई मुझे तो कोई नहीं रोक रहा है, मैं तो जाऊंगी ही है और जाना भी है। मेरे जाने का वक्त है और सैंडी जी के आने का वक्त है। सैंडी विंटेज गोल्ड के साथ आपका मनोरंजन करेंगे हेयर ऑन लाइका गोल्ड, और उसके बाद रात को आप 10 बजे के बाद सुन पाएंगे गोल्ड नाइट्स। एंड मैनचेस्टर में जैजी जे विल बी टेकिंग ओवर, उनका साथ दीजिएगा। और लाइका रेडियो पर नेक्स्ट आ रही है मैसा, उनका भी साथ दीजिएगा। मेरी आज की मुलाकात यहीं ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं विशाल ददलानी जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी। काश कि उन्होंने 90s में भी बहुत सारे गीत बनाए होते तो मैं ज़रूर एक गीत उनका शामिल करती। विशाल ददलानी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर एंड ऑल्सो वेरी गुड सिंगर एज वेल। सो उनको भी बधाई देती हूँ। अगर आपका बर्थडे या शादी की सालगिरह, कोई ख़ास मौका है, आज खास स्पेशल डे है आपके लिए, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। अगले वीकेंड आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और इसी तरह से लाइका के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए सुपर्ब इवनिंग, बाय।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
1: Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
15: London, good news! Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
16: sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sona Tours. Call 0208 951 0111.
17: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
18: London's biggest classics all day. Like a Gold.

0: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
4: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
5: Lotke halo ne nandala.
4: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
5: Meetha khara,
4: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
10: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लखाई रहो छे।
11: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
11: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
10: दर्शन पण अने यूरोप पण।
11: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
10: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स।
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
12: यू नो आई फैन शाउट एट फुटबॉल मैचेस।
13: वेक अप,
12: दैट्स बिकॉज़ साउंड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेल द प्लेयर्स दे आर रबिश। वर्क्स इन एडवर्टाइजिंग टू, बिकॉज़ व्हेन यू एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग यूजिंग रेडियो, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
14: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
1: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
3: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
2: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
3: Call us today on 0208-706-0915. That's 0208-706-0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
2: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं
5: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
6: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
5: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
6: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
5: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
6: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
5: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
6: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Vintage Gold on Like a Gold. Vintage Gold on Like a Gold.
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours, start with BAPS's Swami Narayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: Non-stop classics. This is Like a Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: चलो जाइए एक नवा सफर पर, सीरीन हॉलीडेज साथे।
3: सीरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
4: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
3: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
4: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
3: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो SerenHolidays.co.uk पर।
5: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai real estate stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
7: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
8: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
9: Four beers, please, garçon!
8: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
11: बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

ताली तक धीमी तक ताली तक जमी तक धलाम को तक जुगे तक ताली के नदी तक नक तक जुम तक नक नक जुम तक नक नक जुम तक नक नक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी केटे ताली जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी केटे जम तारी जग तारी तक नक तक तक जिन्न तक जिन्न तक जम तारी जग तारी जाने जाने को